अख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिल कै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना उह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए। जे वड आप ते वड तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। खसम विसारह ते कमजात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सतपुर सतपुरखा। बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर।

अगम अपार सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा

तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुर्बाणा हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुकत पाए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनेक।

तेरे अनेक, तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले।

हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, आप हाथ दै मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिखो सबै करतारा।

चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा।

जिन आप सुवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोबद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले पुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट की जान। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तारत तब देह अपारा। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ।

चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती।

स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारो असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे।

सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा।

जिससे मरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सत्संग जी बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई दियाए पहले अंकित करते अमरदास रामदास से वसाए अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याग सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कारण उन्होंने दया बैठा है सब थाई हुए सहाय दसवें पाचिया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाची ने पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पार दर दत्य अंतर के घर से बोलो जी वाहे गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटिया जपिया तपिया जिन्हें नाम जपया वन चकिया दे चराई तेग वाहे देख जट किया तेना प्यार सत्यारा नी कमाई दत्य अंतर के बोलो जी वाहेगुरु जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म ये सी दिते बंद बंद कटवाए खोपड़िया लवाइया चरखिया चढ़े आर नजराए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं आ रहा से किसी तरीके सत्सा सिंह नवाया ते ना नी कमाई दत्य अंदर के बोलो जी वाहेगुरु पंजा दखता सत गुरुद्वारे दत्य अंदर के बोलो जी वाहेगुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चिताल है चित आवन का सदका सर्व सुखो है जहां जहां गुरु खालसा साहब चरियात देख देख की फतेह बृद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी से आए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु सिखानु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौंकियां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु सिखां दा मन नीवा मत उचे मत पत के राखे आप वाहे गुरु गुरु गरीब नवाज पंजे सदस्य आज दता दियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब तुर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तो आप दे पंथ नूं छोड़िया गलत दर्शन दार ते सिया समाज दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शो हे नोटियां दी ओट गुरु न्यासरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु गुरु दत्त अर्पिता जी दोए कर जोड़ करो अरदास भावे ताने रास हे गरीब नवाज जी आप जी दे चरण कामना अरदास ने दी गरीब नवाज आपने बख्शिश की आपके चरणा गरीब पवित्र गवाणी सुखमणि साहब संपूर्ण पाठ हो चार ऐस वेड़े संध्या समा जान के आपके चरणा सोध अरदास साध पाठ की कृपा करो होइया भुला चुका नहीं माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रवान गुरबाणी का भाव सारिया संगतां देवतां इंसाने की वार्ता करो जी अगो तो शुद्ध पित्र बाणी चाल बल बुद्धि बख्शिश करो गरीब नवाज इस खुशी में आप ये बख्शिया दाता विचों पुत्र कड़ाप शादी देगा तैयार करे हाजतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सार संगत रचना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा क्लेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रक्षा बख्शिश करो जी हे गुरु की विवादार जी आपके बख्शिया दातों के लंगर चुट सेवे प्रमाण कर दी सतार आपके चरणा सेवा कर रहे सारे प्यारिया संघा सिंगणियां तंदुरुस्ती बख्शो चाली करा बख्शो सदा इसे तरह अपने चरणा सेवा दी भावना बख्शी पालता करो गरीब नवाज कृपा कर गुरु सच्चे पातशाह जी आज दर के सेवादार काका जगजीत सिंह के जन्म ने दी खुशी दतार जी परिवार वालों आप चरण धनवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं 200 डॉलर लैके आप चरणा हाथ ने प्रवान कर दिता बख्श कह देगा काका जगजीत सिंह तंदुरुस्ती बख्शो लम्मी आयु बख्शो अरे जाओ बच्चे आप बच्चे सच्चे पातशाह जी तरक्या बख्शने की वार्ता करनी जाओ बच्चे चढ़ कला बख्शिश करो अरे सारे परिवार में दतार पिता जी बाजिया परिवार तंदुरुस्ती सुख शांति चढ़ कला करो कमाइया सबल करो कार्यवाद के बख्शने की वार्ता करो जी गुरु गरीब नवाज डरत्या आप राजा रखो गरीब नवाज तार दियो काका रोनो चौपड़ा दे जन्मदिन की खुशी में अरे बच्चे की पढ़ाई की गरीब नवाज चढ़ कला वास्ते पढ़ाई की कामयाबी वास्ते बेनती कर रहे तार जी काज की पढ़ाई कामयाबी वास्ते बेनती करते हैं गरीब नवाज चौपड़ा परिवार वालों दतार पिता जी 100 डॉलर आप चरना पेटा के परिवार को दतार बख्शे कर दें काका रौनम चौपड़ा तंदुरुस्ती बख्शो लम्मी आयु बख्शो उसी की नाम जाग दतार उची विद्या जाल बनी पारदा करो बच्चे उची विद्या जाल बख्शिश करो जी कृपा करो मेहर करो अमृत वेले तो लैके दरती आई हैं साफ संगत निहाल जी दर प्रवान करो कड़ियां खिलाओ सांगता दर के तिरफुल पेटा बनाने शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु जी महाराज कृपा करो खालसा पंथ सेवक एक दस भाग प्यार जी बख्शी करके सत दस बख्शो चैनल जोड़ करवाने का प्यार बख्शने की बात करो जी गरीब नवाज हर मैदान जवान फदे बख्शाने की बात करो दता मेहर कर आओ सेवा प्रवान करो दतार जी दूर दराज कार बैठ गया डर थकी सरण कार सारी संगत निहाल जी प्रवान करो कड़ियां खिलाओ तारा अपनी कृपा की संगत बख्शे संगत
ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਦ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਸਬਰ ਕਰੋ ਕਾਰਜ ਵਾਧੇ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿਆਓ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿੱਤਰ ਗੁਨਾਮੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਰੰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮਤਾਵਾ ਤੇ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੰਨਾ ਧਰਵਾਦੀ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਸਾ ਨਾਮ ਕਿਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

0: सुनिहार सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

गुरु रामदास जी अपने मालक नू निरंकार नू कह रहे ने एकमिक हो गए अकाल पुरख नाल ते बाणी उच्चारण कर देंगे। जो तो पावे सोई थी सी, जो तू देहे सोई हो पाई। सतगुरु जिमें जिमें तेरा हुक्म है, नक नथ खसम हथ किरत तके दे जहां दाने तहां खाने, नानका सच है तेरी मर्जी। मेरी मर्जी नाल ते मैं सवास भी नहीं लै सकता, मैं अपनी मर्जी नाल साह भी नहीं लै सकता। जे कोशिश करा ना इस साह नू वड्डा छोटा करन दी ते शरीर विच पीड़ा होण लग पैंदी। सब तेरी रचना है, जी जंत सब तुद उपाए, सारा कुछ तेरा ही खेल है। मेर कर तेरा आसरा बन जाए, तेरे नाम दा आसरा बन जाए। करियो कृपा सारे, आपां रोज पढ़दे हां श्री रहिरास साहिब विच्चों।

ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੁ ਨਿਵਲ

ਅਵਰਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੁ ਨਿਵਲ।

तुम ही नानक दास। बोलो जी, बोलो जी। एक ओवंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई त्याए के रंगत गुरु ते अमरदास। रामदासे हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जे जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरया कर नौ निदावे ताए सब थाई होए साए। दसवें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसा पातशाही दी जोत गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वहाई देख के अंडित कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके खालसा जी। बोलना जी। जिन्ना सिंगा सिंगणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल तन चिरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां सिखी केसां सवासां संग निभाई धर्म नहीं हारिया तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी साहे खालसा जी के बोल वाले। बोलना जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाव दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी के बोल वाले। बोलना जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पद दा रखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु जी हे अकाल पुरख सतगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीव श्री ननकाणा साहब होर गुरुद्वारा गुरुधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल प्यारे पंथ खालसा जी नूं बख्शिश करो निमाणिया दे मां निताणिया दे तां नियोटियां दी ओट गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह धन गुरु नानक साहब जी महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज धन धन धन शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है सच्चे पातशाह जी आप जी दे पाणी अंदर चार पहर दिन सुखां दा बतीत होया है सतगुरु जी श्यामा दे दीवाना विच सोदर रहरा साहब जी दा पाठ आरती शब्द कीर्तन गुरमत विचारा अते शब्द कीर्तन होया है सच्चे पातशाह जी संगतां घरां विच बैठ के आपो अपने घरां विच लाइव कीर्तन सुन के गुरु घर दीआं हाजरियां भर रहीआं हन महाराज जी सब दी हाजरी प्रवान करन बेंत सेवावां गुरु घर वास्ते संगतां वलों आ रहीआं ने महाराज जी सबदां दे सभनां दे घरां विच सुख वरताए सतगुरु सच्चे पातशाह जी बेंत संगतां आप जी दे सोहणे दरबार विच बैठ के हाजरियां भर रहीआं ने दाता जी सब दी हाजरी दर प्रवान करो गुरु गरीब निवाज समूह संगतां नूं गुरु घर घर नाल प्रेमा भगती बख्शिश करो समूह खालसा पंथ नूं चढ़ती कला एकता दा दान बख्शिश करो महाराज जी अमृत वेले तों इस वेले तक आप जी की हजूरी विच विचरदे आं बेअंत भुल्लां हो जांदियां ने आप जी बख्शण योग हो इस वेले जी की अरदास आप जी के चरण कमल पास महाराज जी पवित्र हुक्मनामा बख्शिश करो हुक्मनामे ते चलण की समर्था श्री गुरुमुख प्यारे मिलने जिन्हें मिले आप जी का नाम चेतावे नानक नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जी का वाहिगुरु जी की फतेह। तुदा गए अरदास हमारी जियो, कहो नानक सब तेरी कोई नाउ न जाने। बोलो जी, बोलना जी। अरदास एक ओहंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहेब वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जय जय जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर कर नौने दा वैताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु दाता गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान तरके। बोलो जी, निमाणिया दे मान निताणिया दे तान न्योटियां दी ओट तन तन तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी शब्द गुरु सचे पातशाह जी आप जी दे चरणा कमलों विच अरदास बेनती है। आप जी दे पाणी अंदर चार पहर तिन सुखां दा बतीत होया। अमृत वेले तो ऐस वेले तक आप जी ने तख्तां ते प्रकाशवान होके खुले दर्शन दीदार बख्शे ने महाराज। रात दे दीवाना दी संपूर्णता आप जी दी सेवा संभाल सोहला साहिब जी दी बाणी दा पाठ आप जी दे सेवकां पासों कीता गया महाराज जी। बच्चियां पासों बेअंत पुल्लां हो जांदियां ने बख्शण जोग हो। सारियां संगतां दीयां तिल फुल भेटावां दर हाजरी प्रवान करियो। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुक्ते जो बोले ईहां ऊहां सच होवे। अपने कीर्तनिया दे सेवकां दे सारे कारज रास रैन सुखमई वतीत होवे। सेवादार हाजर ने आग्या बख्शिश करो। निज स्थान सचखंड पलंग ते विराजमान होवो। अमृत वेले फिर दर्शन बख्शियो जी। सुख होवे नाम चितावे नानक नाम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

チキンもね。

दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध।

गहमानी। प्रभु के सिमरन हुए सुफला, प्रभु के सिमरन सुफल फला। से सिमरै जिन्ह आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए।

प्रभु को सिमरै सी सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभु को सिमरै से पर उपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी। प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै। प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभु को सिमरै तिन अनंत कनेरे, प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे।

हर नाम जपत कछ नाहे बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन कै माल खजीना, हर धन जन कुआ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं चपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे। पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिदवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग बड़ भागी पाई, संत की सेवा नाम ते आई। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक।

सब ध्यान कट शास्त्र सिमरत विख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया सगल त्याग बन मध्य फिरया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होम में बहु रतना शरीर कटाए होम में कर राती वर्त नेम करे बह पाती नहीं तुल राम नाम विचार नान गुरमुख नाम जपी एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदास तपी सरथी वैगन माहे हुमत प्राण कनिक सब है वर भूम दान न्यौली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजमत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे ताव पी होम में मैल न जावे हर के नाम समसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत घत पाही मन कामना तीर दे छुट्टे गर्भ गुमान मन ते हुट्टे सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबू न बिखे अटरे जल तू वै बहु देह अनीत शुद्ध का हुए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहमूच बहुत सयान जम का पौ व्यापै अनिक जतन कर तृष्ण ना त्रापै भेख अनेक अग्नि बुझै कूट उपाव दर कहनी सिजै छूट सनाही उपयाल मुहि व्यापै माया जाल अवर कर तू सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिन नहीं मानै।

जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सासंग जाका मिटै अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गणीय सब ते उच्चा जाका मन हुए सगल कीरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पेखै सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पापु नहीं लेपा निर्धन को धन तेरू।

प्रवरातिक तुमरी उस्त तुम ते हुए नान कवर न जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जब निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम में उदम भला हर का नाम जपो जी सदा।

एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श लेहु तौ नानक सीजै, जे प्रसाद धारु पर सुख बसहै, सुत प्रात मीत बनता संग हसहै, जे प्रसाद पीवहै शीतल जला, सुखदाई पवन पव का मुल्ला, जे प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस पाव कर नित रसना, तिसे त्यागवर संग रचना।

तुमरी कृपा तरह संग सहाय सुआवे न चीत जो बैराई ता सुप्रीत बलवा के गृह भीतर बसे अंद के लमाया रंग रसे दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह याहू जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख लिहु अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिन सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समग्री तुमरे

पतजाय अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावै एक वस्त कारण विकोट गवावै एक भी ना दे दस भी हिर ले तो मूड़ा कहु कहा करे जे ठाकुर स्यो नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन उठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया गंत साहु अपनी दे रास खात पीत बरतैन उलास अपनी अमान कछ बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीता ही होवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्त से आज्ञा रख प्रभ की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिर की छाया स्यों रंग लावे उ बिन सहु मन पुछतावै।

आई मिथ्या तन धन कुटम सुबाया मिथ्या हूं मैं ममता माया मिथ्या राजुवन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता मिथ्या त्रोमु अभिमानु मिथ्या पशु पर कर्त गुमानु अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना पूजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कौताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तान नहीं पर उपकारा मिथ्या वास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम लय विरथी साकत की आर जा साच बिना कह हुवत सूचा।

गोविंद भजन बिन वृथे सब काम, ज्यों कृपन के निरारत दाम। धन धन ते जन जे कट बस्यो हर नाउ, नानक ताकै बल बल जाउ। रह तवर कछवर कमावत, मनि प्रीत मुखो गंडलावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख न काहू भीन। अवर उपदेसै आप न करै, आवत जावत जन्मै मरै। जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार। जो तुम पानी तिन प्रभ जाता, नानक गुण जन चरण पराता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपह मानै। आपह आप आप करत नबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव से आनत सगल ते रहत, सब कछ जानै आत्म की रहत। जिस पावै तिस ले लड़ लाए, थान तनंतर रहा समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी। सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सुजाए अहंग मेव। नानक प्रभु शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेवस्त पदी। जे प्रसाद छत्ति ही अमृत खाए, तिस ठाकुर कौ रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावै, तिसको सिमरत परम गत पावै। जे प्रसाद वसै सुख मंदर, तिसै त्याय सदा मने अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरहु तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावह, तिसै त्या कतवर लुभावह। जे प्रसाद सुख से सोई जय, मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जे प्रसाद तू सब को मानै, मुक्ता को जस रसन बखानै। जे प्रसाद तेरु रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जब दर गह मान पावह, नानक पत छेती घर जावह। जे प्रसाद आरो कंचन देही, लिवलावु तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तिरौला रहत, मन सुख पावह हर हर जस कहत। जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पार ठाकुर प्रभु ताकै। जे प्रसाद तुझको न पहुँचै, मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद अपूखन पहरी जय, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जे प्रसाद असव हस्त सवारी, मन तिस प्रभु कौ कबहू न बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तना, राख पुरोए प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बणत बनाई, उठत बैठ सत सहत्याई। तिसह त्याय जो एक अलखै, इहां उहां नानक तेरी रखै। जिह प्रसाद करै पुन बहुदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान।

गुर प्रसाद नानक जस कह। जेह प्रसाद सुनै करन नाद, जे प्रसाद पेखै विस्माद, जे प्रसाद बोलै अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना, जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है, जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सहज समाव है, सा प्रभु त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभु को मूल न मनो विसार, जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूढ़ तुता।

हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते हुए परगासु, प्रभु दया ते कमल विगासु, प्रभु सुप्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मतूतम हुए। सर्व निदान प्रभु तेरी मया, आपू कछु न किन्हु लया।

सात संग स्थित मन पावे, साध के संग माया ते भिन्न, सात संग नानक प्रभु सुप्रसन्न, सात संग दुश्मन समीत, साधु कै संग महापुनीत, सात संग किस्यो नहीं बैरु, साध के संग ना भीगा पैरु, साध के संग ना ही को मंदा, सात संग जाने परमानंदा, साध के संग ना ही हो ताप, साध के संग तजै सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई, साधक संग न कब हुतावै, साधक संग सदा सुख पावै, साध संग बसै गोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै, साधक संग बसै थानि उच्चै, साधु

नानक साधक संग सफल जन्म। साधक संग नहीं कछ कालो, दर्शन भेटत होत निहालो। साधक संग कलुकत हरै, साधक संग नरक पर हरै। साधक संग इहां उहां सुहेला, साध संग विचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नान कुदरै सा सुन रसै। साधक संग सुनु हर नाऊ, साध संग हर के गुण गाऊ। साधक संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साधक संग लगै परम मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी। साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुन है तेता बख्यान है। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रे भरपूर। साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूछ ते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक

लेप ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दुख जैसे सूर सर्व कौ सुख ब्रह्मज्ञानी कै दृश्य मान जैसे राज रंग कौ लागै तुलपवान ब्रह्मज्ञानी कै धीरजेक ज्यों बसदा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्मज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सह सुभाऊ

ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा, मने अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।

ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की

का कथिया न जायदाखिर। ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गात ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार। नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त

नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक उर धारै जो अंतर नाम सर्व मैं पिखै भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार है नानक अपर सगल निस्तार है अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्स पर त्रै रूप न पिखै नित्र साध की टैल संसंग हेत करना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद भिख्या पर हरे मन की वासना मन ते टर इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानकोट मदे को ऐसा परस वैसन सो जी सुपर सो प्रसन्न बिशन की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हु वह नि कर्म तिस वैसन का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावै नानको वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म सासुन पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै विष्ण प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नान कैसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म में शुद्ध है राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो नया वै बीज प्राण सिमरत बूझै मूल सुख

पावै जन कोए कर कृपा अंतर उर धारै पस प्रेत मुक्त पात्र कौतारै सर्व रोग काउ कद नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम काउ जुगत कितै न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सतराम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास संतन पाई तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गै प्रवान अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सो जी परै

वर्ण, तैसी उस माटी, तैसा अमृत, तैसी बिखाटी, तैसा मान, तैसा अभिमान, तैसा रंग, तैसा राजान, जो वर्ता ईसाई जुगत नानक पुर कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ, जित जित कर रखे तैसा तिन आऊ, आपे करण करावण जोग, प्रभाव है सोई पुन होग, पसरे आप अंत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल, श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पार अवार, नानक रचना प्रभ रचि बहु विधनिक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थ वासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम त्या वह नानक करते कंत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभेगात्म निकोर, कई कोट पर दर्व को ही रह, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रमाहे, कई कोट पर देश फरमाहे, जित जित लाभ तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्पो पाए, कई कोट पात्र बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बै संतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नखियतर, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूतार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राज स्थान सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्शास्त्र, कई कोट की रतन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा, सब ते निर सबूते दूर, नानक आप लिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीव मरे, कई कोट बोजूनी फिर, कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट काल थक पाए, कई कोट कीर्तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पाणा तै तै राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाथे, कई कोट भय वैरागी, राम नाम संगतिन निबलागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म है पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, जिनको मिलो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हो आप सुख प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हो अवतार, कई जूत कीनो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा के कंकार, कई कोट कीने बोपात, प्रभ ते हो प्रमा इस माता कंत, न जाने कोई आपे आप, नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन उवता तुम परगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर भय सत सत ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, आत्मरा सुख सह समावे, अपने जन को साथ साथ सुमारे, नान कोई परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभे कहे दूसर नाही कोई, नान किस बलिहार ने जल थल महियल सोय, अष्टपदी करण करावन करने जोग, जो तिस भावे सोई होग, किन मैं थापु थापन हार, अंत नहीं किस पार आवारा, हुक्मे धार धर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे उच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रहा समाई, प्रभावै मानु गत पावै, प्रभावै ता पात्र तरावै, प्रभावै बिन शास्त्र राखे, प्रभावै ता हर गुण पाखै, प्रभावै ता पत तुधार, आप करे अपन विचार, दुआ सिरिया काप स्वामी, खिल विकसै अंतर जामी, जो पावै सुकार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानुक ते क्या होए आवै, जो तिस भावै सोई करावै, इसके हाथ होए ता सब किछ ले, जो तिस भावै सोई करे, अनजानत विख्या मैं रचै, जे जानत अपना बचै, पर में भूला दह दिस्तावै, निमक मैं चार कुंट फिरे आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन्ना मिले, किन मैं नीच कीट कौराज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जा का दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दा जिस प्रगटावै, जा को अपनी करै बख्शीस, ताका लेखा न गनै जगदीश, जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जी बै देख बढ़ाई, इसका बल ना ही सहाथ, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस पावै सोई पुनतियो,
कबू ऊंच नीच मैं बसै, कबू सोग हरख रंग हसै, कबू निंद चिन्ह व्यवहार, कबू बकास बयाल, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानका मिलावनहार, कबू नृत्य करे बोपात, कबू होए रहे दिन सोए रहे दिन रात, कबू मां क्रोध विकराल, कबू सर्व की होत रवाल, कबू हुए बह बड़ राजा, कबू पेकारी नीच का साजा, कबू अपकीरत में आवे, कबू भला भला कहावे, ज्यो प्रभरा कहते ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कह, कबू होए पंडित करे बख्यान, कबू मोन धारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिर साजिक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनेक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप ज्यो सुहागी दिखावे, ज्यो प्रभावे तिबे नचावे, ज्यो तिस पावे सोई हुए, नानक दूजा वर न कोए, कबहू सात संगत उपावे, उस स्थान ते गौर न आवे, अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नाम रतिक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिटके गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान, सलोक सुखी बसै मुस्किनी, आया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतराज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान, जो जान मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत, आपस को करवंत कहावे, जन्म मरै बो जून परमावै, धन भूमिका जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै, नानक तिहां मुक्ता गै सुख पावै, धनवंता होए कर गरबावै, तिन समान का संग न जावै, बोलस कर मानु कूपर करे आस, पल भीतर ताका हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, किन मैं होए जाए पसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय किस करे कुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान, कूट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, निक तपस्या करे अहंकार, नर्क सुर्ग फिर अवतार, अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवे, हर दर गह को कैसे गवे, आपस को जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट न आवे, सर्व किरीन जाका मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए, जापे जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तारे कुबैरी मीत, तब लगने चरना ही चीत, जब लग मोह मगन संगमाए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हो छूटे, सहस कटे लाख उठता वै, तृप्त न आवे, माया पाछे पावे, निक भोग विख्या के करे, न तृप्ता वै, खप खमरे, बिना संतोख नहीं कूरा, जय सुपन मनोरथ वृथे सबका, जय नाम रंग सर्व सुख हुए, बड़भागी किसे प्राप्त हुए, करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करने हार, इसके हाथ कहा विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा हुए, आपे आप आप प्रभ सोए, जो किछ गिनु सु अपने रंग, सब ते दूर सबु कै संग, बूझे देखे करै विवेका, पहे का पहे अनेक, मरे न बिनसै आवै न जाए, नानक सद ही रहा समाए, आप उपदेसै समझे आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप किनु अपन विस्तार, सब कछ उसकाउ करने हार, उसते भिन कहो किछ होए, थान थनंतर एकै सोए, अपने चलताप करने हार, कौतक करै रंग आपार, मन में अमन अपने माहि, नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने बख्यानी, सच सच सत सब कीना, कोट मध्य किने बिरले चीना, भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी, घट घट सुनी श्रवण बख्यानी, पवित्र पवित्र

वदी संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुट्टै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखै न कोई, संत कै दुखन थान भ्रष्ट हुए, संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संसंग निंदक भीतरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिद जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मै जलै, संत कै दुखन सब को छलै, संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाव को नाहे, नानक संत पावै तां भीगत पाए, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक टिक न पाए, संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखी अर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत के निंदा दुख में दोख, नान संत भावै तुम उसका पी हुए मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसै का निमित्त, संत के दुखी को डाल लाग गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी माँ अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख न सुख ते टरै, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नान संत भावै तां लय मिलाए, संत का दुखी आद बीज ते टूटै, संत का दुखी कितै काज न पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान परमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहि, अपन बीज आपे ही खाहि, संत के दुखी कबर न राखन हार, नानक संत भावै तां लै उबार, संत का दुखियों बिल लाई, ज्यों जल बिहुन मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पाव किंदर नहीं त्रापै, संत का दुखी छुट्टै केला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहि दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पाया, नानक जो तिस भाव है सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पूजै न आसा, संत का दुखी उड़चले निराशा, संत का दुख न तिष्ट कोई, जैसा भाव है तैसा कोई हुए पया, किरत न मिटै कोई, नानक जान सच्चा सोई, सब घट तिस क्यों करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की स्तुति करो दिन रात, सहते आवो सास गिरा, सब कछु वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेलाप करने हार, दूसर कौन कह विचार, विष्णु कृपा करे दिस आप नाम दे बड़ भागी, नानक जन से सलोक

अष्टपदी मानुकी टेक वृत्ति सब जान देवन को एक कह भगवान जिसका दिया रह अघाय बहुत न तृष्णा लग गया है। मारे रखे को आप मानु कह किचना ही हाथ तिसका हुकुम भू सुख होए तिसका नाम रख कंठ पुरोय सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक विघ्न न लाग गए कोय। उस्तद मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना मृत भी उसदा सुहेला कर लह जियो नहनु पेख ठाकुर कारंग सात संग बिन सह सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानकू जन्मथा बिडभागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करह विचार चेतन मंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानू ते सुखी एको एक एक पहचाने तुत की सोची जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपन आप सुजै तिसकी जानू तृष्णा बुझै सा संग हर हर जिस कहत सर्व रूप त्यो हर जन रहत अंदर कीर्तन केवल बख्यान कृष्ण में सोई निर्वाण एक ऊपर जे जन की आशा तिसकी कटी है जम की फासा पार ब्रह्म की जिसमन भूख नानक दिशा न लागे दूख जिसको हर प्रमन चित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस पर भी अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोधत सोधत सोधत सीजिया गुरु प्रसाद तत्सा बूझिया जब देखो तब सब किच मूल नानक सो सुखम सो ये स्थूल न कि जन्म न किच मरे अपन चलता भी करे आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगुण में आप अनिक युक्त रचता प्रताप अविनाशी ना ही किच कांड तारन तारे हो ब्रह्मांडल कपे पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सु सुभावंत सगल संसार उदर तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुर का सब जप भय निहाल उनकी सेवा सोई लाग गए जिसनु कृपा करह बिडभागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान जो किच करे सु प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुभाय हुए सो हुए करण हार पछाण है सोए प्रभ का किया जन्मी टिलगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माहे समाये हुए सुख निदान उन्हों बने आए।

सगल की चिंता जिस मन माही तिसते बिरता कोई नाही। रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप अपन किया कछु न हुए जे सो प्राणी लोचै कोए तिस बिना ही तेरा किछ काम गद नानक जपे हर नाम रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की जो सगल कट सो है धनवंता हुए क्या को गर्व है जा सब किस तिसका दिया दर्व है सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहता वै जे को हुए बह दातार तिस देन हार जाने गावार जिस गुर प्रसाद टूटै हो रोग नानक सूजन सदा अरोग जो मंदर को थामे थम्मन त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मन जो पाखा नाव चढ़त रह प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है जो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन हुए विगास जो माव ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु सांग मिल जोत प्रगटावे इन संतन की बांछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिललाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है धूप सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसे चितार जो कच करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान कौन बसताई तेरे संग लपटरे रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद छेती कर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज मान लियो मन मूल राम नाम हृदय में तो लाद के संत संचाल अवर चा बिखिया जंजाल धन धन कह सब कोए मुख उजल हर दर गह सोए हो व्यापार बिरला व्यापार है नानक ता कह सद बलिहार है चरण साध के तोए तोए पियो हर प्रसाद को अपना जियो साध की धूर करो स्नान साध उपर जाइए कुर्बान साध सेवा वड भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है अनिक बिघन ते साधु राख है हर गुण गाय अमृत रस चाख है ओट गही संत है दरिया।

सुनी है करता कै तुराज मै राज जोग मै जोगी तप मह तपेसर गृष्ट मह भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मिथ नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता के जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जनदास नाम त्या वैसे त्यो गुण मैं जाको फरमाए।

0: सभी करे तिरंग नाना बिद किनो विस्तार प्रभु बनासी एक अंकार नाना चलत करे किन वाहे पूरे पूर्ण सब ठाए नाना बिद करबंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तल तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीव नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिय सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवन कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सूजन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख सब माहे समानी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नान गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर दे प्रवेश सत निरत बुझै जी कोई नाम जपता की गत हुए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित रत जिसकी सिर सुकर ने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक जुत भावे सोवरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बुझिया तिसे आया स्वाद प्रभ कै रंग राजन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख टनहार जा कै संग तरह संसार जन का सेवक सोवड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे
1: जुगाद सच हैपी सच नानको सी पह सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यानहार आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत साजा सुनता बूझण हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप जन मान्या करम क्राम तिन मूल पछान्या जा के हृदय विश्वास प्रवाया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरपो होए बसाना जिस उजिया तिस माहे समाना बस्त मैले बस्त गडाई ताको भिन्न न कहना जाई बूझे बूझण हार बपीक नारायण मिले नानकीक ठाकर का सेवक आज्ञाकारी ठाकर का सेवक सदा पुजारी ठाकर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकर के सेवक की निर्मल रीत ठाकर को सेवक जाने संग राव का सेवक नाम की रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जय दया प्रभ तारे नानक सो सेवक सास मारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को देवड़ाई अपने सेवक को नौज पाई अपने सेवक की आपत रखे ताकि कतमित कोई न लाखे प्रभु के सेवक को ना पहुँचे प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नान सो सेवक दै दृष्टाया नीकी किरी मैं कल राखे भस्म करे लश्कर कोट लाके जिसका सास न काढ़ते आप, ताको राख देकर हाथ, मांड जतन कर्तव पात, तिसके कर्तव बिरते जात, मारे राखे अवर न कोई, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रबल खोडानी, बारू बार बार प्रभु जपिए, पी अमृत ए मंत्र त्रपिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस कवर नहीं दिखाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्ताने, मन तन नामे नाम समाने, ऊठ बैठ सोवत नाम, कहो नानक जल के सर काम, बोलो जस जीवा दिन रात, प्रभुणे जन कीनी दात, करे भगत आत्म कह चाए, प्र अपने सो रहे समाए, जो हुआ हो सो जाने, प्र अपने का हुक्म पछाने, जिसकी महिमा कौन बखानो, जिसका गुण कह एक न जानो, आठ पैर प्रभ से हजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट ले, मन तने अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सोजन सर्प तो का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सा पाप मिटावे, अवर सियाण सगली शाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवण जानना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, सलोक सात पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग से उतरे, नानक हर गुण गाओ, अटपली सतगुर से की करे प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सेकी गुर दुर्मत मल हिरे, गुर बचनी हर ना उचरे, सतगुर से के बंधन काटे, गुर का सिख विकार तिहाटे, सतगुर से को नाम तंदे, गुर का सिख बुढ़ भागी है, सतगुर से का हल्त पल्त सवारे, नानक सतगुर से को जी नार समारे, गुर के गए सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम रे सत्यावे, मन बेचे सतगुर के पास, ते सेवक के कार्य रास, सेवा करत हुए ने कमी, जिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नान सो सेवक गुर की मतले, बीस बिस्वे गुर का मन मने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुरु चिरदे हर नाओ, अनक बार

ब्रह्म रहता, ब्रह्म में जन, जन में पार ब्रह्म, एक आप नहीं कि परम, सहस्य अंत लया न जाइए, नानक कैसा गुरबिण भागी पाइए, सफल दर्शन पेखत पनीत, पर सचरण गांधर्मरीत, पीठ संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर्गे गए, सुनकर बचन कर्ण अगने, मन संतोख आत्म पत्याने, पूरा गुर आख्यो जा का मंत्र, अमरदृष्ट पेखे होए संत, गुण बेअंत तीर्त ने पाए, नार जिस पावे ते लै बुलाए, जीवा एक उस्त अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोल पौष्ट प्रणी, अगमय गोचर प्रभु निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने न पाई, अनक भगत बंधन नित करे, चरण कमल हृदय सिमरे, सद बलिहारी सदगुरु अपने, नान जी प्रसाद ऐसा प्रभु जपने, एहू हरस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमर सोए, उस पुरका नाही कले विनाश, जा के मन परगटे गुणता, आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेव को दे, मोह माया के संग न लेप, मन में रखे हर हरेक, अंधकार दीप प्रकाशे, नानक परमो दुखते तैनसे, तौत माहे ठाण वर्ताई, आंद पया दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिठे अंधे से, साधु के पूर्ण बले से, पहु चुका निरपो है बसे, सगल व्याज मानते खैन से, जिसका सा तिन कृपा तारी, सास जप नाम रारी, थित पाई चूके परम गवण, सुन नानक हर हज सरवण, निर्गुण आप सरगण पी होई, कला तार दिन सगली मोई, आपने चरित प्रभाव बनाए, आपने कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोई, सर्व निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, पय प्रगास साल के संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलिहारी।

मस्तक लेख एको जप एको सलाहे एक सिमर एको मनाहे एक के गुण गौ अनंत मंत्र जा एक पवन एको एक एक हरियाप पूर्ण पूर्ण प्रयो प्रव्याप अनक विस्तार एक ते पहे एक रात प्राच गए मंथन अंतर एक प्रवरता प्रसाद नानक एक जगता सलो फिर सुफिरत प्रभ आया पढ़िया तो सरनाई नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लायस्पति जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावूं सास सास प्रभ तुम्हें त्यागूं चरण कमल से लागे प्रीत भक्त करूं प्रभ की नित नीति कोटि को आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट मां सुख हुए हर रस पावे बिरला कोई जिन चाख्या से जन त्रिपतानि पूर्ण पुरख नहीं डोलानि सुपार परे प्रेम रस रंग उपजा चाओ साध कै संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रगासन दिन लिविलाग बिडभागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रत्ते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनू सदा निहाल बंधन काण मुख जन भया जन मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सब पूरी रव रया सत्संग हजूरी जिसका साथिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै

अगन मैं राखै गुरु प्रसाद को फिर लाला कह सुख बिस्तरै जी बिकते काट है जन्म जन्म का टूटा गढ़ है गुरु पूरे तथि है बुझाया प्रभु अपना नानक जन त्याय साजन संत करो एक काम हां त्याग जपो अर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अर नाम जो पावो भगत पाए तरिया संसार बिन भगति तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रचाओ मन तन अंतर ही सुहाव नित रूपेक दर सुख होए मन विकसै सात चरण धोए भगजन कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे करमया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहा सर्व समाय प्रभ सं दीन दयाल भगत वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपालात पुर कारण करताल भगजन के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पनीत भक्त पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच जान नानक तुमरे शरण पुरख भगवान सर बैकुंठ मुक्त मुख पाए निम करके गुण गाए अनिक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई वो भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बतनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत सात संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आपु अपन किया नानका पे ही फिर जापष्ट बदी जब कार्य कछना दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाता बैर विरो के संकमा जब इसका वर्ण चिन्ह जब तब हर सुख किसे व्यापत जब अपन आपा पार ब्रह्म तब मोह का के सोवत परम अपन केला वर्ती जा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभु केवल तनी तब बंद मुक्त को किसको गनी जब एक रगम पारू तब नरक सुर को कौन उतारू जब निर्गुण प्रभु सह सुभाई तब शिव शक्त कहो कित ठाई जब आप है आप अपनी जो तरह तब कवन निडर कवन कत डरे अपन चल तब करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपना सुन तय जन्म मरण को कहा बिना सुन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अभिगत गोचर प्रभिका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपना पापी चर्जा नानक अपन रूपा भी ऊपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल छिद्र लगत को की जय जो स्वरूपी जो संग समावै तय किसे भू कवन त्रिपतावै करण करावन करने हार नान करते का नाही सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बा मित्र सुत भाई जय सर्व कलाया पै प्रवीण तय वेद देव कहा कुचीन जब अपना पाप उतार है तो सगन अप सगना कहा विचार है जय अपन ऊंचापन अपने रहते कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माग नानक अपनी गत जन हुआ जय अचल अचेद फिर सुमाया वहां किसे व्याप्त माया उसको अपया देश क्यों गुण का ना ही प्रवेश जय कह एक एक भगवंता तय कौन चिंत किस लागै चिंता जय अपना पाप तिहारा तय कौन कत कौन सुनने हारा बहु बेअंत उचते ऊंचा नानका पुष्कु आपह पहुंचा जया प्रचो प्रपंच कार त्यो गुण में किन्नो विस्तार पाप उन तय पही कहावत को नर को सुर्ग बंशावताल जाल माया जंजाल हो मैं मो परम पै भार दुख सुगमान अपमान अनक प्रकार की उपज्ञान आपन के लाभ कर दिख खेल सुकुच है तू नानक कह जय अभिगत भगत है आप जय बुसरे पासार संत प्रताप दुहु पाका पे धनी उनकी शोभा नुहु बनी तय आपह कौतक करे आनंद चूज आपै रस भोगन निर्जोग जिस पावै तिस आपन ना इलावे जिस पावै तिस खेल खिलावै बेशुमार था गंत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै श्लोक जी जंत के ठाकुर आया पे वर्तनहार नानक को पसरिया दूजा कह दृष्टा राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हार आपै का विस्तार जा तिस पावै तां सृष्टि उपाय अपने भाने लय समाये तुम ते भिन्न नहीं किच होए अपन सो सब जगत पुरोए जाको प्रभु जी आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंतर सबता कै हाथ दीन दयाल अनाथ को ना जिस राख तिस को न मारे सो मुआ जिस मनो विचारे तिस तजबर कहा को जाए सब श्री निरंजन राय जी की जुग जाके सुभात अंतर बाहर जानू साथ गुण निदान बेअंत पार नानक दास दा बलिहार पूरण पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जान आप अंतर जामी रहो व्याप व्रतपाल जीन बपात जो जो रुचि सुति सहत्यात जिस पावै तिसलै मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक के जानिया जन लागा हर एक नाई तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक कौ सेवा बने आई हुकम बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जा कै मन बसिया निरंकार
बंधन तोर भय निर्वैर अंदन पूजा गुरु के पैर लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभया पहमेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का है सुहाओ आठ पैर प्रभ पिखो नेरा मिटा ज्ञान बिनसे अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हलत पलत दुएले हो सुवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुर के पूरे देखिया जिस मन बसे तिसात परिखिया मंत्र नाम जपो लिवलाए दूर दर्द मनते पहुँचाए सच व्यापार करो व्यापार इधर गहने बह के तुम्हारी काटे रखो मन वाहि नानक बहुर नया बह जाहि तिस्ते दूर कहा को जाय उबरे रख नहार त्याय निर्भउ जपै सकल भव मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुट्टै जिस प्रभ राखै तिस नाहि दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाय मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुँचन हार सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कार्य पूरा मत पूरी अमर जा की दृष्ट दर्शन पेख तु कुदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन

अष्टपदी पूरे गुरु का सुनो उपदेश। पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरहु गोविंद। मन अंतर की उतरे चिंद, आसु नित्या गुतरंग। संत जना की तूर मन मांग, आप छोड़ बेनती करहु। साथ संगण सागर तरहु, हर तन के पर लेहु पंडार। नानक गुरु पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहजानंद, साथ संग पज परमानंद। नरक निवार उदारु जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित चित हो नारायण, एक एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का है धार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमली कलाल रतन। सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोक कह निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महांत कह माथे, नानक उदरे तिन कह साथे। शरण जोग संसरणी आए, कर कृपा प्रभाप मिलाए। मिट गए बैर भय सबरेन, अमृत नाम साथ संग लैन। सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होई सेव की सेवाल। जिजाल विकार तेरे ते राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभतारी, नानक निभी खेप हमारी। प्रभ के उस्तद करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सुहूत निदान। सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचा सोच ना हो वई जे सोची लख वार चुपै चुप ना हो वई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाणपा लख हो ता एक ना चले नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडे आई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमें कह ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जानै निशान गावै को गुण वडियाईया चार गावै को विद्या वेखम विचार गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लै फिर देह गावै को जपै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी ना आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मे हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे प्रवाह साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आख है मंगा है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख दुआर नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस पावा विण पाणे के नाए करी जे ती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोए ना सुजई जे तिस गुण कोए करे सुना सद पीर सुरनाथ सुना धरत धवल आकाश सुना दीपलो पाताल सुना पोहे ना सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै ईसर ब्रह्मा इंद सुनै मुख सालाहन मंद सुनै जोग जुगत तन भेद सुनै शास्त्र सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास
सुनाए सात संतोख ज्ञान, सुनाए आठ साठ का इसनान, सुनाए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनाए लागे सहज ध्यान, नानक भगतां सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नाश, सुनाए सारा गुणा के गाह, सुनाए सेख पीर पात साह, सुनाए अंधे पावे राह, सुनाए हाथ होवे असगाह, नानक भगतां सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछुताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ना है सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ना है सगल पवन की सुध, मन्ना है मोहे चोटा ना खाए, मन्ना है जम कै साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ना है मार्ग ठाक ना पाए, मन्ना है पात सिंह परगट जाए, मन्ना है मग न चले पंथ, मन्ना धर्म से तीसन बंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ना है पाव है मुख द्वार, मन्ना है परवार है साधार, मन्ना तरह तारी गुर सिख, मन्ना है नानक पाव है ना पिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पाव है दरगह मान, पंचै सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कहे करे विचार, करते कह करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवे सचियार, तबलै ऊपर केता पार, धरती होर पर परै होर होर, तिसते पार तलै कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन राहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाख सार, असंख मोन लेव लाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फेराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर कर है पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख काहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लेखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जेव फुर माए तेव तेव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हाथ पैर तन देह, पानी धोता उतर सोखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओह धोए,
पर यह मत पापा कै संग ओह तो पै नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहो जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए वेण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवण सो वेला वखत कवण कवण थेत कवण वार कवण से रुती माह कवण जित हुआ आकार वेल न पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख कुराण थेत वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई जा करता सर ठीक हो साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपो जाने अगै गया ना सो है पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कतेबा असलो एक तात लिखा होए ता लिखी है लिखा होए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाही एती सुरत ना पाईया नदियां अतै वाह पवै समुंद ना जानिया समुंद साह सुलतान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तोल ना होवनी जेत समन होना भी सरह है अंत न सिफती कहन ना अंत अंत न करण देन ना अंत अंत न वेखण सुनण ना अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ ए वड ऊंचा होवै कोए तैस ऊंचे को जाने सोए जे वड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए किते मंगह जोद अपार किते आ गणत नहीं विचार किते खाप तुटै वेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाहे किते आ दुख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी पाणै होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाणै जेतिया मोहे खाए आपे जाने आपे दे आखै है से पे के इके जिसनो बख्से सिफत सलाह नानक पात साही पात साहो अमुल गुण अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबाण अमुल तुल अमुल परवान अमुल बखसीस अमुल निसान अमुल करम अमुल फुरमान अमुलो अमुल आखिया न जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्याण आख है बरमे आख है इंद आख है गोपीत गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करे ता आख न सको है केई के जे वड पावै ते वड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल विगाड़ ता लिखिया सिर गावारा गावार सो दर केहा सो कर केहा जित बह सर्ब संभाले
ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕਿਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀ ਅਨ ਕਿਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵੈ ਤੁਹਨ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵਹ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਹ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵਹ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵਹ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਹ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ਗਾਵਹ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮਸ਼ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵਹ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵਹ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਦਨੋ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜੇ ਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤੇ ਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਿਭੂਤ ਹਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣ ਘਟ ਘਟ ਵਜਹਿ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਤੀ ਰਿਧ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲਿਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਣ ਜਿਵ ਤੇ ਸੁਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਉ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਏ ਤਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਇਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸਾਣ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕਿਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕਿਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ਼ ਕਿਤਿਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ
केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कूड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्ला कथिया न जाहे जे को कह पिछे पछुताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोद महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरे न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथे भगत वसै के लू करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत न अंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तप ताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िए शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो आपणी के नेड़े के दूर जिने नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिने नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं शपै छंद त्व प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज केह जय कोट इंद्र इंद्राण साहो साहान गण जय तेरे भवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान तृण कहत त्व सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत भुजंग प्रयात छंद नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतहमंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अडाहे नमस्तंग अनीले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अशेदे नमस्तंग अगादे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सो एकाय नमस्तंग अनेकाय नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्परमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्पेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरताते नमस्तंग निरकाते नमस्तंग नरतूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग नरतापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रमाने नमस्तंग निधाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग तिरवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तंग जलाशरे नमस्तंग निराशरे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेसंग अदेसे नमस्तंग अपेसे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निर्बामे
నమో సర్వ కాలే, నమో సర్వ దయాలే, నమో సర్వ రూపే, నమో సర్వ కూపే, నమో సర్వ ఖాపే, నమో సర్వ థాపే, నమో సర్వ కాలే, నమో సర్వ పాలే, నమస్తస్త దేవ, నమస్తం అపేవ, నమస్తం అజనమే, నమస్తం సుబనమే, నమో సర్వ గౌణే, నమో సర్వ పౌనే, నమో సర్వ రంగే, నమో సర్వ పంగే, నమో కాల కాలే, నమస్తస్త దయాలే, నమస్తం అభరణే, నమస్తం అమరణే, నమస్తం జరారం, నమస్తం కృతారం, నమో సర్వతందే, నమో సాత్వబందే, నమస్తం నృసాకే, నమస్తం నిర్వాకే, నమస్తం రహీమే, నమస్తం కరీమే, నమస్తం అనంతే, నమస్తం మహంతే, నమస్తస్తరాగే, నమస్తం సుహాగే, నమో సర్వసోఖం, నమో సర్వపోఖం, నమో సర్వకర్త, నమో సర్వహర్త, నమో జోగ జోగే, నమో భోగ భోగే, నమో సర్వదయాలే, నమో సర్వపాలే, చాచరీ షండ త్వ ప్రసాద, అరూప హై, అనూప హై, అజూ హై, అపూ హై, అలేఖ హై, అపేఖ హై, అనామ హై, అకామ హై, అతే హై, అపే హై, అజీత హై, అపీత హై, త్రిమాన హై, నిధాన హై, త్రివర్గ హై, అసర్గ హై, అనిల హై, అనాద హై, అజే హై, అజాద హై, అజనమ హై, అవర్ణ హై, అపూత హై, అపర్ణ హై, అగంజ హై, అపంజ హై, అచూజ హై, అచంజ హై, అమీక హై, రవీత హై, అతంధ హై, అబంధ హై, నిర్బూజ హై, అసూజ హై, అకాల హై, అజాల హై, అలా హై, అజా హై, అనంత హై, మహంత హై, అలీక హై, నిర్శ్రీక హై, నిర్లంబ హై, అసంభ హై, అగమ హై, అజమ హై, అపూత హై, అశూత హై, అలోక హై, అశోక హై, అకర్మ హై, అపర్మ హై, అజీత హై, అపీత హై, అబా హై, అగా హై, అమాన హై, నిధాన హై, అనేక హై, ఫిర్ ఏక హై, భుజంగ ప్రయాత షంద, నమో సర్వమానే సమస్తి నిధానే, నమో దేవ దేవే అపేఖీ అపేవే, నమో కాల కాలే, నమో సర్వపాలే, నమో సర్వగౌణే, నమో సర్వపహుణే, అనంగీ అనాథే, నరసంగీ పరమాథే, నమో పాన పానే, నమో మాన మానే, నమో చంద్ర చంద్రే, నమో పాన పానే, నమో గీత గీతే, నమో తాన తానే, నమో నిరత నిరతే, నమో నాద నాదే, నమో పాన పానే, నమో బాద బాదే, అనంగీ అనామే సమస్తి స్వరూపే, ప్రపంగీ ప్రమాథే, సమస్తి బేభూతే, కలంకం బినానే కలంకి స్వరూపే, నమో రాజ రజవేశ్వరం పరమ రూపే, నమో జోగ జోగవేశ్వరం పరమ సిద్ధే, నమో రాజ రజవేశ్వరం పరమ మృదే, నమో శస్త్రపాణే, నమో అస్త్రమాణే, నమో పరమ జ్ఞాత, నమో లోకమాత, అపేఖీయ పరమే, అపోఘీయ పుగతే, నమో జోగ జోగవేశ్వరం పరమ జుగతే, నమో నిత నారాయణే క్రూరకర్మే, నమో ప్రేత అపరేత దేవేశోధర్మే, నమో రోగహర్త, నమో రాగరూపే, నమో సాహసాహం, నమో పూప పూపే, నమో దాన దానే, నమో మాన మానే, నమో రోగరోగే, నమస్తం ఇస్నానం, నమో మంత్రమంత్రం, నమో జంత్రజంత్రం, నమో ఇష్ట ఇష్టే, నమో తంత్రతంత్రం, సదా సచ్చిదానంద సర్వం ప్రణాసీ, అనూపే అరూపే సమస్తం నివాసీ, సదా సిద్ధదా బుద్ధదా బిరుదకర్త, అధో ఊర్ధ అర్ధం అగం ఓగహర్త, పరం పరం పరమేశ్వరం పురుషపాలం, సదా సర్వదా సిద్ధదాత దయాళం, అశేదీయ పేదీయ నామం అకామం, సమస్తో పరాజీ సమస్తామం, తేరా జోర చాచరీ షంద, జరె హై, థలే హై, అపీత హై, అపే హై, ప్రభు హై, అజూ హై, అదేశ హై, అపేశ హై, భుజంగ ప్రయాత షంద, అగాధే అబాధే అనందీ స్వరూపే, నమో సర్వమానే సమస్తి నిధానే, నమస్తవం నిర్నాథే, నమస్తవం ప్రమాథే, నమస్తవం అగంజే, నమస్తవం అపంజే, నమస్తవం అకాలే, నమస్తవం అపాలే, నమో సర్వదేశే, నమో సర్వపేశే, నమో రాజరాజే, నమో సాజ సాజే, నమో సాహసాహే, నమో మాహ మాహే, నమో గీత గీతే, నమో ప్రీత ప్రీతే, నమో రోఖ రోఖే, నమో శోఖ శోఖే, నమో సర్వరోగే, నమో సర్వభోగే, నమో సర్వజీతం, నమో సర్వపీతం, నమో సర్వగయానం, నమో పరమతానం, నమో సర్వమంత్రం, నమో సర్వజంత్రం, నమో సర్వదృశ్యం, నమో సర్వకృష్ణం, నమో సర్వరంగే, త్రిపంగీ అనంగే, నమో జీవ జీవం, నమో బీజ బీజే, అఖిజే అపిజే, సమస్తం ప్రసిజే, కృపాలం స్వరూపే, కుకర్మం ప్రణాసీ, సదా సర్వదా హృద సిద్ధం నివాసీ, చర్పట శాంతత్వ ప్రసాద, అమృత కర్మే అమృత ధర్మే, అఖల్ జోగే అచల్ భోగే, అచల్ రాజే అటల్ సాజే, అఖల్ ధర్మం అలఖ కర్మం, సర్వం దాత సర్వం జ్ఞాత, సర్వం పానే సర్వం మానే, సర్వం ప్రాణం సర్వం త్రాణం, సర్వం భుక్త సర్వం జుగత, సర్వం దేవం సర్వం పేవం, సర్వం కాలే సర్వం పాలే, రువాల్ శాంతత్వ ప్రసాద,
ఆద రూప అనాద మూరత అజోన పురుఖ అపారు సర్వమాన త్రిమాన దేవ అపేవ ఆదు ఉదారు సర్వపాలకు సర్వకాలకు సర్వకోపున కాల యత్ర తత్ర విరాజహి అవతూత రూప రిసాల నామ ఠామ నా జాత జాకర రూప రంగ నారేఖ ఆద పురుఖ ఉదార మూరత అజోన ఆద అశేఖ దేశ ఔర నా పేస జాకర రూప రేఖ నా రాగ యత్ర తత్ర దిశా విశా హోయ ఫైలో అనురాగ నామ కామ విహీన పేఖత తమహు నహ జాహే సర్వమాన సర్వత్ర మాన సదైవ మాన తతాహే ఏక మూరత అనేక దర్శన కీన రూప అనేకో ఖేల ఖేల అఖేల ఖేలన అంతకో ఫిర ఏక దేవ పేవ నా జానహి జేహ భేద ఔర కతేవ రూప రంగ నా జాత పాత సో జానై కేహ జేబ తాత మాత నా జాత జాకర జనమ మరణ బహీన చక్ర బక్ర ఫిర చతురు చాకు మానై పొరతీన లోక చౌదహ కే బిఖయ జగ జాపహి జిహ జాప ఆద దేవ అనాద మూరత థాపేవ సబై జిహ థాప పరమ రూప పునీత మూరత పూరణ పురుఖ అపార సర్వ సవరచయో స్వయంభవ గడన పంజనహార కాలహీన కళా సంయుగత అకాల పురుఖ ఆదేశ ధర్మ తామసో పరమ రహత అపూత అలఖ అపేస అంగ రాగ నా రంగ జా కహ జాత పాత నా నామ గర్భ గంజన దోష్ట పంజన ముకుత దాయక కామ ఆప రూప అమీక అన ఉస్తత ఏక పురుఖ అవతూత గర్భగంజన సర్వ పంజన ఆద రూప అసూత అంగహీన అపంగ అనాతమ ఏక పురుఖ అపార సర్వలాయక సర్వకాయక సర్వకు ప్రతపార సర్వగంత సర్వహంత సర్వతే అనపేఖ సర్వశాస్త్ర నా జానహి జిహ రూప రంగ అర రేఖ పరమ వేద పురాణ జాకహ నేత పాఖత నేత కూట సిమ్రత పురాణ శాస్త్ర నా ఆవహి వహ చేత మధుభార షంద త్వ ప్రసాద గుణగణ ఉదార మహిమా అపార ఆసన అపంగ ఉపమా అనాంగ అనపౌ ప్రకాశ నిసదిన అనాసు అజాన బాహో షాహాన షాహు రాజాన రాజ పానాన పాన దేవాన దేవ ఉపమా మహాన ఇంద్రాన ఇంద్ర బాలాన బాల రంకాన రంక కాలాన కాల అనుపూత అంగ అప అపంగ గతమిత అపార గుణగణ ఉదార మునుగణ ప్రణామ నిర్భయ నికామ ఆత దూత ప్రచండ మిత గత అఖండ ఆలస్య కర్మ అదృశ్య ధర్మ సర్వ ప్రణాడ్య అండండ బాడ్య చాచరీ షంద త్వ ప్రసాద గోవిందే ముకందే ఉదారే అపారే హరియం కరియం నిర్నామే అకామే పుజంగ ప్రయాత షంద చతుర్చక్ర కర్త చతుర్చక్ర హర్త చతుర్చక్ర దానే చతుర్చక్ర జానే చతుర్చక్ర వర్తి చతుర్చక్ర భారతి చతుర్చక్ర పాలే చతుర్చక్ర కాలే చతుర్చక్ర పాసే చతుర్చక్ర వాసే చతుర్చక్ర మాన్య చతుర్చక్ర దాన్య చాచరీ షంద న సత్రయ న మిత్రయ న పరమం న పిత్రయ న కర్మం న కాయ అజన్మం అజాయ న చిత్రయ న మిత్రయ పరేహ పవిత్రయ ప్రతిశయ అధిశయ అదృశయ అకృశయ భగవతి షంద త్వ ప్రసాద కథతే కే ఆశేజ దేశ కే అపేజ పేశ కే అగంజ కర్మ కే అపంజ పరమ కే అపేజ లోక కే అదేత శోక కే అవతూత వర్ణ కే బేపూత కర్ణ కే రాజం ప్రభాహ కే ధర్మం తుజా హై కే అశోక వర్ణ కే సర్వ అపర్ణ కే జగతం కృతి హై కే శత్రం క్షత్రి హై కే బ్రహ్మం స్వరూప కే అనుపౌ అనూప కే ఆద అదేవ హై కే ఆప అపేవ హై కే చిత్రం బహిన కే ఏక అధిన కే రోజీ రజా కే రహి మేరే హక के पाप बेऐब है के गैबुल गैब है के अपुल गुनाह है के शाहन शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी दहिंद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण्य के सर्वत्र पहुन्य के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨਿਆ ਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਿਆ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਜਾਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਥਾਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭਾਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਚੰਦਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਪਰਮੰ ਫਹੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਆਕੁਲ ਅਲਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈ, ਤਮਾਮੁਲ ਰਜੂ ਹੈ, ਹਮੇ ਸੁਲ ਸਲਾ ਮੈਂ, ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾ ਮੈਂ, ਗਨੀ ਮਲ ਸਿਕਸਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਅਲ ਪਰਸਤਾ ਹੈ, ਬਿਲੰਦ ਅਲ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਲ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਤਮੀਜ਼ ਅਲ ਤਮਾਮ ਹੈ, ਰਜ਼ੂ ਅਲ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਹਰੀਫ ਅਲ ਅਜੀਮ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਉਲ ਤਰੰਗ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੈ, ਅਪੰਗ ਹੈ, ਅਜੀਜ਼ ਉਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਗਨੀ ਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਵੰਸ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ, ਨਿਰਬਾਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਓਅੰ ਆਦ ਰੂਪੇ, ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਪ੍ਰਗੁ ਤ੍ਰਿਬਾਦੇ, ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਦੇ, ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ, ਸੁਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੇ, ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਸ਼ਿਜ ਹੈ, ਅਸ਼ੂਤ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ, ਵਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ, ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਅਨਉਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਅਨੰਗ ਹੈ, ਅਭੇਖ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਪਰਮ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਹੈ, ਅਜੈ ਹੈ, ਅਭੈ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ, ਅਤੂਤ ਹੈ, ਅਨਾਸ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੈ, ਅਤੰਦ ਹੈ, ਅਬੰਧ ਹੈ, ਅਭਗਤ ਹੈ, ਵਿਰਕਤ ਹੈ, ਅਨਾਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ, ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ, ਅਲਿਖ ਹੈ, ਅਦਿਖ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਖ ਹੈ, ਅਟਾ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਹੈ, ਅਸੰਭ ਹੈ, ਅਗੰਭ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਨਿਤ ਹੈ, ਸੁਨਿਤ ਹੈ, ਅਜਾਤ ਹੈ, ਅਜਾਦ ਹੈ, ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਰਬੰਹੰਤਾ, ਸਰਬੰਗੰਤਾ, ਸਰਬੰਖਿਆਤਾ, ਸਰਬੰਗਿਆਤਾ, ਸਰਬੰਹਰਤਾ, ਸਰਬੰਕਰਤਾ, ਸਰਬੰਪ੍ਰਾਣੰ, ਸਰਬੰਪ੍ਰਾਣੰ, ਸਰਬੰਕਰਮੰ, ਸਰਬੰਧਰਮੰ, ਸਰਬੰਜੁਗਤਾ, ਸਰਬੰਮੁਕਤਾ, ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸੇ, ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ, ਅਭੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਥੰ ਪ੍ਰਮਾਥੇ, ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਥੇ, ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ, ਨਿਰਬਾਧ ਬਿਭੂਤੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ, ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ, ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ, ਨਾ ਪੋਤਰੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ, ਨਾ ਸਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ, ਨਾ ਤਾਤੈ ਨਾ ਮਾਤੈ, ਨਾ ਜਾਤੈ ਨਾ ਪਾਤੈ, ਨਿਰਸਾਕੰ ਸਰੀਕ ਹੈ, ਆਮੇ ਤੋ ਆਮੀਕ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਅਜੈ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ, ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਮੇ ਸੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀ ਫੁਲ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ, ਬਹਿਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੁਲ ਗਵਨ ਹੈ, ਹਮੇ ਸੁਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਤਮੀਜ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਅਜੀਜ ਹੈ, ਪਰੰ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸੁਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਹਮੇ ਸੁਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਲ ਜ਼ਮਾ ਹੈ, ਅਮੀਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੋਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਵਿਭੂਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰ ਅਨੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਗੁਣਗਨ ਮੁਦਾਮ, ਅਰਬਰ ਆਗੰਜੋ, ਹਰਨਰ ਪ੍ਰਪੰਜੋ, ਅਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਮੁਨ ਮਨ ਸਲਾਮ, ਹਰਨਰ ਅਖੰਡ, ਬਰਨਰ ਅਮੰਡ, ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ, ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ, ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ, ਅਨ ਸ਼ੇਜ ਅੰਗ, ਆਸਨ ਅਭੰਗ, ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ, ਗਤਮਿਤ ਉਦਾਰ, ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ, ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ, ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ, ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ, ਤ੍ਰਿਤ ਧਰ ਤੁਰਾਸ, ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੋ ਏਕ ਸਦਾ ਹੋ, ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ, ਖਲਖੰਡ ਖਿਆਲ, ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ, ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ, ਅਨ ਸ਼ਿਜ ਗਾਤ, ਆਜਿਜ ਨਾ ਬਾਤ, ਅਨ ਝੰਜ ਗਾਤ, ਅਨ ਰੰਜ ਬਾਤ, ਅਨ ਠਠ ਭੰਡਾਰ, ਅਨ ਠਠ ਅਪਾਰ, ਆਢੀਠ ਧਰਮ, ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ, ਅਣ ਬ੍ਰਣ ਅਨੰਤ, ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ, ਹਰ ਬੂਲ ਮਨਾ ਛੰਦ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ,
करुणा लह अर कल है, खलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उभारण है, त्रित के धरण है, जग की करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्व पास्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वम्भर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, धरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अजबा कृत है, अमृता मृत है, नर नायक है, खाल कायक है, विश्वम्भर है, करुणालय है, नृप नायक है, सर्व पायक है, भाव भंजन है, अर गंजन है, रेप तापन है, जाप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म वास है, जस के जास है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सात रूपे, नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अश्री शांत अजय अलय अपय अभय अबू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अडा।

दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेबूते। चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते। दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के। देख फिरे ओंकार जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के। सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के। श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के। माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे। कोट तुरंग कुरंग से कूदत पाउन के गौन कौ जात निवारे। भारी पूजान के भूप पहली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे। इते पहे तो कहा पहे भूपत अंत कौ नंगे ही पाए पधारे। जीत फिर सब देश दिशान को बांजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे। भूत पवेख पवान के भूपत कौन गन नहीं जात बिचारे। श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे। तीर्थ नान दया दम तान सो संजम नेम अनेक बसिख है। वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है। पौन आहार जति जत तार सबै सो विचार हजार क देख है। श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है। सुध सिपाहा दुरंत दुबाह सुसाज सुनाह दुर्जान दलेंगे। भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे। तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे। श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरे यार अब चार है सार की तार पछैया। तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया। गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया। साहेब सिरी सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया। दानव देव फनिंद ने साचर भूत पवैख पवान जपेंगे। जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे। उन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट इस नानक जादिक दान अनेक सुअम्बर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जाम फास परेंगे। जे नार श्रीपत के प्रस है पाग ते नार फेर न देह तरेंगे। कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। नहत फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो। बास पियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैठ बितायो। साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर आवाची दिशा मैं काहू पशा को शीस नेवायो। को बुतान को पूजत है पाश को मिरतान को पूजन तायो। कूर किरिया उर जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। कूर किरिया उर जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबे उबाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम का वहो। आप हाथ दय मुहे बचा वहो।
सुखी बसै।

परिवार सेवक सिख सब करतार मूरछा निज कर दै करी है सब बैरन को आज संघरी है पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हू जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जो करे हाउ रक्षा राख ले हो मोहे रखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बप धरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सतरन को पालमो बाद कियो काटो काटो के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै काट काट के पट पट की जानै जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब अकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपने बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्बकार निरलंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपने बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत भुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पयो संकर इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह आह रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट तरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तनक मोहर हो रिद सिद कर्मो सब होई दुष्ट शाह हसवाय सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्ब ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस तुज भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावै सोई दुख नत सह व्यापत कोई अड़ेल सुनै गुंग जो जाहे सुरस न पावई सुनै मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहै हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहै चौपाई
संबत सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहस फुन तीन कहिजय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवार तीरस्थ द्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बह भेद कहे हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहयो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहेओ तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोबिंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाड़ कै गहेओ तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोबिंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दोता गावह हरि केरा मन जिने वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ऊ करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गलां समर्थ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साची साहेबा क्या नाही घर तेरा है घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा है साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटुक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे कह नानक तय सुख हुआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बेन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजहो क्या करे बेचारिया तुद बाज समर्थ कोए नाही कृपा कर बनवारिया एस नाउ होर थाउ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बाजहो क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा के लिवेक कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चै सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावै पावै ता सो जान दे जिसनु होर क्या करह वेचारिया एक भरम भूले फिरै दहें देसो एक नाम लाग सुवारिया गुरप्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावै कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावै आवो संत प्यारे हो अकथ की करै कहानी करह कहानी अकथ केरी कित द्वारै पाईऐ तान मान तान सब सौंप गुर कौ हुक्म मन्या पाईऐ हुक्म मन्ने हो गुरु केरा गावो सची बाणी कहे नानक सुनो हो संतो कथ हो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन इत भरम भुलाया माया त मोहनी तिने कीती
जिन ठगौड़ी पाइया कुर्बान कीता तिसै विटहो, जिन मोह मीठा लाया कहे नानक मन चंचल, चतुराई किने ना पाया ए मन प्यारिया, तू सदा सच सोमाले, ए कुटुंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले, साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइए, ऐसा कम मूले न कीचै जित अंत पछोताइए, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किने तेरा, अपना आप तू जान है, जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाण है, आख है ता वेख है सब तू है, जिन जग तू उपाया, कह नानक तू सदा आगम है तेरा अंत न पाया, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीने सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तो दो उपाय एक वेख पर सुन आया, लाभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया, भगतां की चाल निराली चाला निराली, भगता हा केरी बिखम मार्ग चलना, लाभ लोभ अहंकार ताज तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्यों तिखी वालों निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगता जुग जुग निराली, ज्यों तू चला है तिव चला है स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चला है तिव चला जिना मार्ग पावहे, कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावहे, जिसनों कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे, कह नानक सच्चे साहेब ज्यों पावै तिवै चलावहे, एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया, एहो तिन कै मन वसिया जिन तुरहु लिखिया आया, एक फिरै कनेरे करहै गल्लां गल्ली किने ना पाया, कह नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया, पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए, गुरमुख जिनी त्याया पवित, माता पिता कुटुंब सहत स्यों पवित, संगत सबाइया कहंदे पवित सुन दे पवित, से पवित जिने मन वसाया, कह नानक से पवित जिने गुरमुख हर हर त्याया, करमी सहज ना उपजै विण सह जाए सहसा ना जाए, नह जाए सहसा कित संजम रहे कर्म कमाए, सह सह जियो मलीन है कित संजम धोता जाए, मन धोवो शब्द लागहो हर सिउ रहो चित लाए, कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाए, जियो मैले बारहो निर्मल बारो निर्मल जियो त मैले, तिनी जन्म जुए हारिया ए तिशना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया, वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही फिरै ज्यो बेतालिया, कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिन जन्म जुए हारिया, जियो निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सात गुर ते करणी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचै नाही मनसा सच समाणी, जानम रतन जिने खटिया भले से वण जारे, कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहै गुर नाले, जे को सिख गुरु से ती सन मुख होवै होवै ता सन मुख सिख कोई, जियो रहै गुर नाले, गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मै संभाले, आप छड सदा रहै परणै गुर बिन अवर न जाने कोए, कहे नानक सुनो संतो हो सो सिख सन मुख होए, जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै, पावै मुक्त ना होर थै कोई पुछो बबेकियां जाए, अनेक जूनी भरम आवै विण सतगुर मुक्त ना पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखो विण सतगुर मुक्त ना पाए,
आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गाव हो सच्ची बाणी बाणी ता गाव हो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिन कौ नदर कर्म होवै हिरदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पाणी कहे नानक सदा गाव हो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजा हो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन पै रवाणी कहे नानक सतगुरु बाजा हो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा ए हुआ समाओ शब्द से ती मन मिलया सच्चे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सेव साकत आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए आप वेखाए गुरमुख किसे बुझाए तोड़े बंधन होवै मुकत शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एकस स्यों लिवलाए कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततै सार न जाने ततै सार ना जानी गुरु बाजों ततै सार ना जानी तिही गुणी संसार भ्रम सुता सुतिया रैण विहाणी गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कहे नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हर लिव लागे जागत रैण विहाणी माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनहु क्यों विसारी है ए वडदाता जे अग्न में आहार पहुंचावे उसनो क्यों पोहे न सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपने लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कहे नानक ए वडदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अग्न उदर मैं तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जे ही करता खेल रचाया जात इस पाणा ता जम्या परवार भला पहाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पाओ दूजा लाया कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिने विचे माया पाया हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसे विट हो रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुर जे मिले किसनो सिर सौंपी है विचों आप जाए जिस दा जियो तिस मिल रहा है हर वसै मन आए हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पल्लै पाए हर रास मेरी मन बन जा रहा हर रास मेरी मन बन जा रहा सतगुर तेरा सजानी हर हर नित जपेओ जी ओह लाह खटे हो दिहाड़ी एहो धन तिना मिलया जिन हर आपे पाणा कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जा रहा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पिए हर रस बहुड़ न तृष्णा लागे आए एहो हर रस करमी पाई है सतगुरु मिले जिसे आए कहे नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहे नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो
ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਇਹ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਇਹ ਸਰਵਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਾਵਨਿਦ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੁਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਕਰ ਗਾਵਹੋ ਗਾਵਹੋ ਤਾਂ ਸੁਹਿਲਾ ਘਰ ਸੱਚੈ ਜਿਥੈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਆਵਹੇ ਸੱਚੋ ਤੇ ਆਵੈ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵਹੇ ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧਨ ਧਨ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਰ ਧਨ ਸੋ ਦਿਨ ਸੰਜੋਗੜਾ।

दंडौत बंदन अहंकार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ।

सत्संग जी। बोलो जी, वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाज भगवती पाशी दसवीं प्रथम भगवती समर कह गुरु नानक लई त्या है। फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय, अर्जन हर गोविंद सिमर श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याग ते सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमर है कर नौन दया वैसा है। सब थाई हुए सहाय दसवें पाचिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई हुए सहाय दसा पाचिया के पुत्रात्म स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पालदार दाते अंतर के खातर से। बोलो जी वाहेगुरु। गरीब महाराज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपिया मन चख्या देख चलाई वाही देख निट कीता तेना प्यारे ते प्यारे नी कमाई दते अंतर की। बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म ऐसी ही दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइया चरखियां चले आर न चलाए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा से किसी के सत्संग निभाया तिना नहीं कमाई दते अंदर की। बोलो जी वाहेगुरु। पंजा गुरुद्वारा दाते अंदर की। बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चिताव है। चित आवड़ का सत्कार सर्व सुख हो वह जहां जहां गुरु खालसा साहब तहां तहां रखे रियायत देख देख की फतेह ब्रज की पहच पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले। बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकियां चंदे बुंगे जुग जुग टन धर्म का जयकार। बोलो जी वाहेगुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत के राखे आप वाहेगुरु। गुरु गरीब महाराज पंथ सदा सहाय दरदार जी हो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब से होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आपके पंथ न छोड़िया गया दर्शन दार सेवा समाज का दान अपने खालसा जी ने बख्शो। हे न्योटिया दी ओट गुरु न्यासरिया दे आसरे गुरु तान तान गुरु ग्रंथ दरदार जी हो दुए कर जोड़ करो अरदास तुत भावे ताने रास। हे गरीब महाराज जी आपके चन कामना दरदास दरदार जी आपने बख्शिश की है अमृत वेरे प्रकाश पर संतन दर्शन दर दे के निर्दार जी हो बेहत बाणी अंत पार करो ऐसा रागी सिंह आप चरण जासा की वार्ता की तर कितने विद्वान भीर ने अज हुक्मनामे की कथा जब प्रचार की है कृपा करो हो या भुला चुका ने माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी शोध के सच खंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदय नुकसान की कृपाता करो जी अगो तो शोध से पुत्र बाणी चाह बल बुद्धि बख्शिश करो महाराज। इस खुशी में आप जी दख्शियां दाता पितर कड़ाप शादी देख तैयार करके हाथ दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सा संघ की रसना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। गिरुराज कृपा करो आप मखियां दातों जो लगा रहे थोड़ सेवारियां प्रबंध कर दी गिरुराज आपके चरण सेवा कर रहे सारे टैलियां सिंह सिंगणियों तंदुरुस्ती बख्शो चाटी करा बख्शो तो सदा ही इसे तरह अपने चरण सेवा की भावना बख्शी पालता करो गिरुराज मेहर करो अमृत वे तो लैके दाते आई साफ संगत हाजरी दर प्रवान करो घड़ियां लेके लाओ संगतों का दर देते फिर भेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु सचे पातशाह बख्शो दतार आज दर कर सेवा दार भाई सुखजीत सिंह अपने सपुत्र परमदीप सिंह के जन्मदिन की खुशी में बच्चे के चंगे संजोगों वास्ते बेनती करते हैं एक सौ एक डर आप चाहे पेटक प्रवान करो दार बख्शिश करो मेहर करते हैं कि महाराज परमदीप सिंह बच्चे तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो माता पिता धर्मदेश कौमर आ गया कार बख्शी कर दतार कृपा करो बच्चे चाली कला बख्शो और चंगे संजोगों की दाज बख्शी करके चरना धनवाद की बनाओ दात्या की लाज पत्र रखो कमाइया सफल करो जी कृपा करो गुरु विनवाज दूर दराज कारण बैठी लाइव खत्म की श्रवण कर रही हैं सारी संगत की हाल जी करो घड़िया लेके लाओ तारा आप कृपा की संगत उदम बख्शे संगत आप चरना धनवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगतार संगत माया पेटा कर ही चरना प्रवान करो बख्शिया साहब की कमाइया सफल करो कार्य वाद मददार सब संगत शुभकामनावान सरों का पूरी करो जी साहब मेहर करो खालसा पंथ सिख कौम एकता स्वागत पे आज बख्शिश करके सत रोज दाल बख्शो चरना जुड़ो कमल प्यार कृपाता करो जी दार मेहनत कर आओ सेवा प्रवान करो पूरा चुका माई बख्शो पितर को नमें बख्शे बरंग लड़ी वास्ते आज पाठ करने वास्ते आ गया बख्शो रहेंदे काल सवार के चरना धनवाद बनाओ सही प्यारे मेरे जिन्हें मेरे आपका नाम जता नानक नाम चढ़ती करा तेरे पाने।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਜਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾ

0: सुनहार सत्प्रियाकाल।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

कर्म कमा राज कहावै हौ कर्म कमावै बाध्यो नलनी भ्रम सुआ कहो नानक जिस सत

लेख असंक लिख लिख मान, मन मान्य सच सुरत बखान, कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार, लेख असंक।

बिन सतगुर भेटे सब फिरै अहंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजै बिनसै पत खोए, गुरमुख होवै बूझै सोए। महगो मोल भार अपार, अटल अछल।

सूतक अग्न भखै जग खाए, सूतक जल थल सब ही थाए, नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसाद।

दर घर महली हर पत रख है। एहो मन राजा सूर संग्राम, एहो मन निर्भउ गुरमुख नाम। मारे पंच अपने वस किए, हौ मैं ग्रास इकत थाए किए। गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे, गुरमुख एहो मन

0: तुमरी चरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सोहेले राख हो राखन हार दयाला नानक करके गोले परम सत्कार जी सत्संग जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये सन सत्कार योग मनमोहन सिंह जी जिन्होंने आप जी ने राग दरबार अंदर बड़ा रस पेना कीर्तन सरवण करवाया है, उन्होंने हार्दिक हार्दिक धन्यवाद जी। हूँ आप जी ने अगला जथा आके कीर्तन द्वारा निहाल करेगा जी कार्योग ज्ञानी हरभजन सिंह जी लहरी से उन्होंने जथा उन्होंने शब्द गायन करने जी। पहला शब्द है श्री राग का तत्ती राग ने सो उन्होंने तीन राग उन्होंने अज सरवण करवाने ने। श्री राग का शब्द है जी हर बिन जियो जल बल जाओ। ते अगे है जी दूसरा राग तुखारी राग चेत बसंत भला। उस तो अगला है जी शब्द बसंत राग का ए मन हरिया सहज सफाए। तो आओ उन्होंने पासों आप राग दरबार अंदर इस तीन शब्द लाही बाणी तिना रागा सरगुण करिए बखरे बखरे च समा ठीक 8 बजे तक उन्हों का 8 बजे तो बाद भाई साहब अंकार सिंह जी तो 8:30 की समाप्ति होनी जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।
1: हूँ मैं बेनती करता हाँ भाई रंजन सिंह जी के सारे ये जो शुक्रवार तो शुरू होकर 31 राग दरबार निर्धारित रागों से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश दिवस में समर्पित हर साल की तरह हो रहा है। ये अज दो रागों में कीर्तन करेंगे राग बिलावल राग भाई साहब का

प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा अवनासी। सिमरन ते लागे जिनी आप दे आला, नानक जन के मंगै रवाला। प्रभु को सिमरै से पर उपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलहारी। प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावे। प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभु को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभु का सिमरन कारज पूरे, प्रभु का सिमरन कपूना जूरे। प्रभु का सिमरन हर गुण बानी, प्रभु का सिमरन सहज समानी। प्रभु का सिमरन नीचली आसन, प्रभु का सिमरन कमल विगासन। प्रभु का सिमरन अनहर चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार। सिमरा से जन जिन को प्रमया, नानक तिन जन तल निपया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाय। हर सिमरन भय सिद्ध यति राते, हर सिमरन नीचे चौकुंड जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमरन हर कारण करना। हर सिमरन की ओ सगली आकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। कर कृपा जिसा

हर का नाम जन को मुकुट जुगत हर का नाम जन को त्रिपुट भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब प्राणा भंग हर का नाम जन की मडियाई हर का नाम जन सो वापाई हर का

खजीना हर तंजन को आप प्रभ जी नाम हर हर जन कह ओ सुल्तानी हर प्रताप जनिया बना जानी ओत पोत जन हर रसराते सुन समाद नाम रसमाते आठ पै हर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगटनी चपै हर के भगत मुगत।

मन कामना तीर दे छुटै गर्भ कुमार ना मंते हुटै सोच करै दिनस हर रात मन की मैल ना तंते जात इस देही को बो साधना करै मंते कपूना भिख्या टरै जल धोवै।

बहुत ज्ञान दमका बहु व्यापै अनेक जतन कर त्रिसुना द्रापै एक अनेक अग्नि पूजा को डुपाव दुर्गा निशी जय छूटत नाही उप प्याल मोहि व्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जमडाना गोविंद भजन बिन तिली मान हर का नाम जपत दुख जाय नानक भूले सहज सुभाय चार पदार्थ जे को मांगे साधु जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोर साधु संगे हो मैं छोर जे को जन्म मरण ते डरे साधु जना की सरणी पर जिस जन को प्रभु दर्श पियाता नानुता कै बल बल जासा सागल पुरख में पुरख प्रदान साधु संजा का मिटे अपमान आप को जो जान है नीचा सो बनिए सब ते ऊंचा जाका मन हो सकल के रीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखा सगले शेष साजना सुख दुख जम सम दिठिता नान पाप पुन्नी लेपा

करण करावन हार स्वामी सगल घटा के अंतरजामी आपने गत में जानू आपे आपन संग आप पर बराते तुमरे उस तुम ते हो नार कवर ना जानत कोई सार्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करामू सागल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मलहिरिया सागल उदम में उदम बला हर का नाम जपो जी सदा सागल बानी में अमृत बानी हर को जात सुंदर तन बखारी सागल थान थे

अष्टपदी दस बस्तुले पाछे पावे एक बस कारण खोट गवावे एक बीना दे दस भी हिले तो मूड़ा को कहा करे दिस ठाकुर तो नाही चारा ताको की जय सद नमस्कार जाके मन लागा प्रभ मीठा सरब सो कथा हु मन उठा जिस दिन अपना हुक्म मनाया सरब थोक नान तिन पाया अगन तथा हो बनी देरा सुखात पीत वर्ता अन्न दुलास।

पैरी जय मन चित मृत क्यों आरस की जय जय प्रसाद आसु हसुवारी मन चित प्रभ को कबूना विसारी जय प्रसाद बाग मिलखत नाराग प्रोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सत सहत आई सहत आई जो एक रखै उन तेरी रखै जे प्रसाद करह पुन गोदान मन आठ पहर कर तिस्का ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्रा है गुरु प्रसाद नान जस गाय जे प्रसाद सुने करनार जे प्रसाद भी कह बिस्मार जे प्रसाद बोल है अमृत रसना जे प्रसाद सुख है जी वरदना जे प्रसाद हर चिकर चला जे प्रसाद संपूर्ण पलाय जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख है जस पावे ऐसा प्रत्याग अवर कत लागो गुरु प्रसाद नान बन जागो जे प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रभु को मूल नाम नो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्य

स्वाद की शोभा तराबियम तू स्वाद की शोभा मूछ दे ऊंची स्वाद की शोभा मूछ दे ऊंची स्वाद की शोभा साध बनियाई नान साध प्रभु भेद ना पाई सरो मन साचा भुख साचा सोए अवरणा फेका एकत बिन कोए नान के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए एक पदे ब्रह्म ज्ञानी सदा दिन लेप जैसे जलमा कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्प को शोक ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन मान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक जो बसदा को खोद को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नान जो पावक का सहज स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला जैसे मैल ना लागे जला ब्रह्म ज्ञानी का मन होई प्रकाश जैसे दर उपरी आकाश ब्रह्म ज्ञानी का मित्र शत्रु समार।

सुभुपरमया ब्रह्मज्ञानी तेकदुरारामया ब्रह्मज्ञानी सदाशंदर्ते ब्रह्मज्ञानी के दृष्टमृतपर्षे ब्रह्मज्ञानी वंदन्ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी के निर्मलयुक्ता ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान

ब्रह्म ज्ञानी कह नाही संदा, ब्रह्म ज्ञानी ले दावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हो शोभला, ब्रह्म ज्ञानी शुभला, ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सकल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह पिता ब्रह्म।

ब्रह्मज्ञानी का निर्मलमंत ब्रह्मज्ञानी जिसक्रय प्रव्याप ब्रह्मज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दृश्य बड़ भागी पाई है ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाई है ब्रह्मज्ञानी को खोज में ही सर नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी के मत नाही ब्रह्मज्ञानी का सकल मनवाहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाना भेद

0: प्रणाम सर्व मैं पेखा भगवान नियमक नियमक ठाकुर नमस्कार है नानक अपरत सकल निस्तार है अष्टपति मिथ्या नाही रत्ना अपरत मन मैं प्रीत निरंजन द्रास
1: परत्रिय रूपना पेख नेत्र साधकी टहल संत संग हेत करना सुने कहो की निंदा सत्य जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या प्रहर मन की बासना मन तेट रह इंद्री जित पंच दुख ते रहत नान कोट मदी को ऐसा परस वैष्णो सो जिसो प्रसो प्रसन्न विसन की माय ते हो पिन कर्म करत है नहीं क्रम तिस वैष्णो कर निर्मल त्रम काहू फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्राच है मन तनंतर सिमरन गोपाल सब प्रोहोत कृपाल आप दृढ़ नाम जपाव नानको हो वैष्णव प्रमुद पावे भगवती भगवंत भगतकार सग त्यागे दुष्ट का संबंध बिन सह सगला को परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मलखो है साध संग पापा मलखो है तिस भगवती कीमत उत्तम हो है भगवंत की टहल करै नितनीत मंत नर पै बिसन प्रीत हर के चन हृदय सौ नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोध है राम नाम आत्म है सोद राम नाम सारस पियोस पंडित कह उपदेश जग जीव हर की कथा हृदय सौ सो पंडित फिर जो न आवे वेद प्राण सिमरत बुझे मूल सुख में जान स्थूल चोर न पौधे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चोर नाम जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत हो सत्संग पावे जन कोई कर कृपांतर उर्धार पास प्रेत मुगध पात्र को तार सर्वराव कहो खदनाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम काहो के काहो जुगत कितने ना पाइये त्रम नानक तिसमिलै जिस लिखिया तोर करम जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सतराम दास सतम राम तिस्मद्रिया दास दसतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर्ग है प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी प्रह सागल संग आत्म दास ऐसे जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्म हिता जीवन मुक्त सो कहा वै तैसा हरख तैसा उसोग सदानंद तय नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी समाटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी तैसा मान तैसा मान तैसा रंग तैसा राजान जोर ताय साई जुगत नानको हो प्रख कही है जीवन मुकत पार के सगले ठाव जित जित कर राख तैसा तिरनाओ आपे करण क्राउन जोग प्रभाव सोई फुन हो कसरी आप हो या न तरंग लखे न जाहे पार रंग के रंग जय सीमत दे तैसा प्रकाश पार रंग करतावना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पै निहाल श्लोक ओस तत्क्रह अनेक जन अंत न पार अवार नानक रचना प्रवृति बोवधानिक प्रकार अष्टदि कई कोट हो पुजारी कई कोट आचार विहारी कई कोट पै तृतवासी कई कोट मन प्रमेदासी कई कोट वेद के सरोते कई कोट तपे सरोते कई कोट आतम ध्यान तारे कई कोट कवका विचार है कई कोट नव तनाम त्याग नान करते कंत ना पाव है कई कोट पे मानी कई कोट अंध है अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिघात निकोर कई कोट पर द्रव को ही रहे कहीं कोट पर दुख ना कर है कहीं कोट माय श्रमा है कहीं कोट प्रदेश प्रमाए जित जित लाभ हो तित तित लगना नानक ते की जान करता रचना कहीं कोट सिद्ध जति जोगी कहीं कोट राज रस भोगी कहीं कोट पंखी स्वरूप पाए कहीं कोट पाथर बिरख न जाए कई कोट पौन पानी बह संतर कई कोट देश को मंडल कई कोट सस्यर सुर नक्षत्र कई कुट देवदान इंद्र सिर छत्र सागल समग्री अपने सुतारे नानक जिस जिस भाव तिस तिस निस्तारे कई कोट राजस तामस सात कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्थशास्त्र कई कोट कीर्तन संबंध कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिरजीवे कई कोट गिरी मीर स्वर्ण थीवे कई कोट जपखे किन्नर पिसाच कई कोट भूत प्रेत सुप्र मृगा सबते नेरे समुते दूर नानका प्रभुर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म है जी है मृय कई कोट बोहो जो नि फिर कई कोट बैठती खाए कई कोट काल तक पाए कई कोट के धनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय भाण तै तय राखे नानक सच प्रभ कै हाथे कई कोट पे वैरागे राम नाम संगति नि लागी कई कोट प्रभु खोजंती आत्म पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यार्थ को मिले प्रभनाश कई कोट मंग सत संग पारन तिन लागा रंग जिन को होया आप सो प्रसन्न आनती जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट होया तार कई जगत किनो विस्तार कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक एकंकार कई कोट किने बहु पात प्रवते हुए ब्रह्मा इसमात ताम पात्रा जाने कोई आपके आप नानक प्रसोई कई कोट पारण के दास तिन होता तुम प्रकाश कई कोट तत् के वे सदा न्यहरे को नेत्रे कई कोट नाम रस पिय अमर भय सत सदी जीव कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सहज समावे अपने जन को सास सास मारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे सरोक कारण कारण प्रवेक है दूसर ना ही कोई नानक तिस बलहार न जल थल में हिल सोए अष्टपदी करण प्राण करना है जोग जो तिस पावे सोई हो खिन में था पता अपना हरा अंत नहीं किच पारा वारा हुक्मे धार अदर रहा वह हुक्मे उपजे हुक्म समय हुक्मे उचनीच व्यवहार हुक्मे अनिक्रम प्रकार कार कर देखे अपनी वडियाई नानक समय रहा समाई प्रभाव मानुगत पा प्रभाव ता पाथ त्रावे प्रभ भाव में सास तेरा ख प्रभाव ता हर गुण पाख प्रभाव ता पति तुधारा पर अपने विचार है दोहा श्रिया का आप स्वामी खेल विसंत्र जामी जो भावे सो कार प्राव नानक दृष्टिया वरुणावे कहो मानुक ते क्या होया जो तिस भावे सोई करावे इसका हाथ हो ता सब पिछले जो तिस भाव सोई करे अनजानत बिख्या में रचे जे जानत अपना बचे परमे भूला दह जिस तावे निमक माए चार कुंड फिरा कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन ना मिले खिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म ग्रीव निवास जा का दिष्ट कछु ना तिस तत्काल दह दिस प्रगटावे जा को अपनी करे बख्शीस ताका लेखा नागना है जगदीश जियो प्रसत इसकी रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी अपनता अपनाए नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बलनाई सात करण प्राण सब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावे सोई पंथी हो कब हो ऊंच नीच में बसे कबो सोग हरख रंग हस कब हो निचिन व्यवहार कब उबा कस प्याल कब हो बेता ब्रह्म विचार कब हो बेता ब्रह्म विचार ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कब निर्तक्र वो पात कबो सोई रह दिन रात कब हो महाक्रोध विकराल कबो सृप की हो त्रवाल कबो हो वहवड राजा कबो बेखर नीच का साजा कबो अपकृत मावे कब हो पला पला काव जो प्रभु राखे तिवी रहे गुरु प्रसाद नानक सच कह कब हो पंडित करे विख्यान कब हो मौन धारी लावे ध्यान कब हो तट तीर्थ स्नान कब सिर साधिक मुख ज्ञान कब हो कीट हस्त पतंग होए जिया अनिक जोन प्रमय प्रम्या ना ना रूप जो स्वागे दिखा जो प्रभावे तिवन चाह जो तिस पाव सोई होए नानक दूजा ना कोई कब हो साध संगत एहो पावे उस स्थान ते बहुर नावे अंतर हो ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नामृत एक रंग सदा सह पार ब्रह्म कह संग जो जल में जलाए कटाना त्यो ज्योति संग ज्योत समाना

केहु धन सार अष्टपदि संत दिनामिल क्रो विचार एक सिमरनाम आधार और उपाव समेत विसारो चरण कमृत में अवतारो कर्ण कान सोबरो समृद गहो नाम हर वत हे तन संचो हो भगवं संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सारा रोग नानक मिट जाए जे धन को चार कुटुटता वे सो धन सेवा थे पावे जिस सुख को रित बात चैमी सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा भजर की सरणी अनेक उपावी रोग न जाए रोग मिटाय रब खतलाए सर्व निदान में हर नाम निदान जपना अंदर गह प्रवान मन पर बोधो हर कहना है दय दिता आवैठाए ताको विघन न लागे कोहे जा कर दे बसैर सोए कल ताती ठांडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव विनचय पूर्ण होए आस भगत भाया आत्म प्रकाश चित कर जाय बसैब नासी को नानक काटी जम फांसी तात विचार कहे जन साचा जन्म रह सुखा चोका चा आवा गावण मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव ये रुतम जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण धार अनेक उपावने छूटन हारे सिमर शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बच्चत राम फल पाए संगना चाला तेरे तन हाथों क्या लपटाए मूर्ख मना सोच मीत कुटमर बनता इनते को तुम कौन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते को कौन छुटकार हस हस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पसारी जिन दिए तिस विजय न बिगाना नाम सार नानक पछताना गुर की मत्य लुए याने भगत बिना बोडू बेस्याने हर की भक्त करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माए जन्म जन्म के किल बिख जाए आप जपो अवरा नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पाओ सार पूत सदर को नाओ सह सुबह नानक गुण गाओ तेरी उत्तर सुमैल बिना जाय हो मैं भी पैल ओह अचिंत बसे सुख नाल साध ग्रह सर नाम संभाल छाड़ सानव सगली मनाल साध संग पावे सच तना हर पुंजी संच करो व्यवहारियां सुखदर कह जयकार सरम निरंतर एक को देख को नानक जाके मस्तक लेख एक को जप एक को साल आए एक सिमर एक को मन आए एकस के गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर्ण प्रव्याप अनेक विस्तार एक ते भय एक राज प्राचत गए मान

जाचक जनजाच प्रवधान कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो धूर पार ब्रह्म श्रद्धापुर सदा सदा प्रभु के गुण गाओ सास सास मृत्यु में त्याओ चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नित एक ओटे को आधार नानक मंगे नाम प्रभु सार प्रभु की दृष्ट महासुख होए हरस पाए बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ता ने पूरण पुरुष डोला ने सोवर परे प्रेम रस रंग उपजय चाव साध के संग परे शरण आन सत्याग अंतर प्रकाश अंध निवलाग बड़ भागी जपया प्रभु सोए नानक नाम रते सुखोए सेवक की मनसा पूरी वही सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभु होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच मुन्नी सरदा सब पूरी रव रहा सत्संग जूरी जिसका साथिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाये सो क्यों विसरै जे काल न भान सो क्यों विसरै जे की आ जान सो क्यों विसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों विसरै जे जीवन जिया सो क्यों विसरै जे अग्न मै राख गुरु प्रसाद को बिरला राख है सो क्यों विसरै जे विकते काट है जन्म जन्म का टूटा काट है गुरपुर तत ए बुझाया प्रभु अपना नान जन त्याया साज

फिर जाप अष्टपदी जब आकार किसने दृष्टेता पाप उन्दव कहते होता जब धारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध की संकमाद जब इसका वरण चिन्ह न जापत तब हर शोक को किसे भी आपत जब आपन आप पार भरम तब मोह कहा कि सोवत भरम आपन खेल आप वर्ती जा नान करना है हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब अंधमकत को किसको गनी जब एक है अहरा गम पार तब नरक सुरक कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सहित सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ढाए जब आप अपनी जोत रह तब कौन निडर कौन कदर डरे आपन चरित आप करने आहार नारंग ठाकुर अगम पार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण को का विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो कि सोए जब अवगत अगोचर प्रवेक का तब चेत्र गोत की पूछत लेखा जब नाथ निर्जन अगोचर का दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ये चर जा नानक आपन रूप बाप ही ऊपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पतोता तय बिन महल को क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अवमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल चित्र लगत को कीस जय ज्योत स्वरूपी जो संग समाव है तय किसै भूख कौन तृताव है करण करावन करण हार नानक करते का नहीं सुमार जो अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कौन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्वकला पै प्रवीन तय वेद कतेव कहाँ कोचीन जब अपने आप उधार है तो सगन अब सगन कहाँ विचार है जय अपन ऊंच अपन ने आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कोई है चेरा विस्मन विषम रहे विस्माद नानक अपनी के जान आप जय छल अछेद भेद समाया वहाँ किसे व्याप माया पस को आप देते गुण का ना ही प्रवेश जय एक है एक एक भगवंता तय कौन चिंतित लाग चिंता जय अपन आप तियारा तय कौन को तय कौन सुनने हारा वो बे तू से ऊंचा नानक आपस को आप पहुंचा जय आप रचियो प्रपंच आकार ते गुण में कीनो विस्तार।

क्षोभ में मोह परम व्यापार दुख सुख मार अपमान अनेक प्रकार के उपख्यान आपन खेल आप कर देखा खेल संकोच तो नानक एक है जय भगत भगत तय आप जय बसरे पासा संत प्रताप नौ पाका पैधनी उनकी शोभा उनो बनी आप कौतक करे अनंचो जाप रस भोग निर्जोग जिस भाव है जिस आपन नाय लावे जिस भाव है तिस खेल खिलावे बेशमार था अगंत अतुल जो बुलावो तो नानक दास बोले।

दृष्टार अश्वति आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जाति पात सृष्ट उपाय अपने भाणे ले समाय तुम ते भिन्न नहीं कछोए आपन सो सब जगत परोए जाको प्रभ जुआ बुझाए सतनाम सुजन पाए सो सुंदर सी तत्कावेता नान सर शिष्का जेता जी जंत्र सत्ता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो विसार है तिस तजावर कहाँ को जाए सब श्री एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सबहात अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान भी अंत पार नानक दास सदा बलहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर हो कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहे व्याप प्रत पाल है जियन बो भात जो जो रचो सो तिशह तिहात जिस भावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाये मान अंतर विश्वास कर्मा ने करण हा नानक जानिया जन लागारे कहना है तिसकी आस मृत्यु जाए सेवक को सेवा बनियाए हुकम बूझ परम पद पाई इसके ऊपर नाय विचार जाके मन मसिया निरंकार बंधन तोर पे निर्वैर अंदिन पूजो गुरु के पैर हे लोक सुखे पर लोक सुवेले नानक हर प्रभु आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गाओ प्रभ प्रभ मानंद राम नाम तत्करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण काय स्वाओ आठ पैर प्रभ प्रखो नेरा मिटे ज्ञान बिन चैन देरा सुन उपदेश हृदय बसाओ मन इच्छे नानक फल पाओ हालत पलत दोयले स्वार राम नाम अंतर उदार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिसमन बसै ते साज परीखिया मार तन राम जपो लिवलाए दुख दरत मन ते भो जाए सच बा पार करो अपार इधर गहने बह खेर तुम्हारी एका टेक रखो मन भाए नानक भोर ने आवे जाए सिस्ते दूर कहाँ को जाए उरे राख न हार दिहाए निर्भो जपे सकल भो मिटाए प्रभु कृपा ते प्राणी छुटाए जिस प्रभु राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तीजन को कोई न पहुंचन हार श्री ऊपर ठांडा गुरु सूरा नानक ताके कार्य पूरा मत पूरी अमर जाके दृष्ट दर्शन पे के उदर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सबल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुर प्रधान जिस मन बसे सो होत निहाल ताके निकट रहे आवत काल अमर पे अमरा पद पाया।

नानक मन परगास। अष्टपदी सांत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्कटमाए, अनेक रंग नाना दृष्टाए। नव अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम। सुन समाध अन तैनाद, कहने जय अचरज विस्माद। तीन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तीजन सो जी पाए। सो अंतर सो बार अनंत, कटकट व्याप रहा भगवंत। तरण माए आकाश प्याल, सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा क्रम। पावन पानी बैस तर माए, चार कुंट दे जिसे समाए। तिस्ते फिर नाही को ठाओ, गुरु प्रसाद नान सुख पाओ। वेद पुराण सिमृत में देख, सचर छूर नक्षत्र में एक। वाणी प्रभु की सबको बोल है, आ पढ़ो न कमो डोल है। सर्व कला कर खेल है खेल, मोल न पाई है गुण है मोर। सर्व ज्योत में जाके ज्योत, आर्य स्वामी ओत पोत। गुरु प्रसाद ब्रह्म का नाश, नानक तिन में विश्वास। संजना का पेखन सब ब्रह्म, संजना का हृदय सब तरम। संत जना सुन है सुबचन, सर्व व्यापी राम संरचन। जिन जाता तिशी रह, सदवचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख मान है, करण करावन हार प्रभु जाने। अंतर बसे बाहर भी होई, नानक दर्शन देख समोई। आप सत किया सब सत, तिस प्रभु सगले उत्पत। तिस भावैता करे विस्तार, तिस भावैता एकंकार। अनेक कला लखी न जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए। काउ निकट कर कहिए दूरा पे, आप भरपूर। अंतर गत जिस आप जनाए, नानक तिजन आप बुझाए। सरा पूत आप

के गुण गाओ अश्वदी पूरे गुर का सुनोपदेश पार ब्रह्म कर कर पेख साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतर चिंत आस नित्यागो तरंग संत जना की तुर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के परले भंडार नानक गुरुपुरी नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संपज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित्चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुर्भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंग बार नानक जी का ये आधार उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाल हे रतन सुनत कमात हो तुदार आप तरलो कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संज्ञा का अमल लागर रंग जय जय शब्द नाहत वा जय सुन सुन आनंद करे प्रभुगा जय प्रगटे गोपाल महत कह माथे नानक उदय तिन के साथे शरण जो सुन शरण ही आए कर कृपा प्रवाह मिलाए मिट गए बैर भये सबरेन अमृत नाम साध संगलैन सो प्रसन्न भये गुरुदेव पूर्ण हुए सेवक से आल जंजाल विकारते रहते राम नाम सुन हसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक ने भी के बमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिसमन बसे सो होत निधान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रकट सबल होए सब थे ऊंच पाए स्थान बौर न हो वह आवन जान हर दन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सात रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध विद्या

सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।